0: Güzel FM, Excel Eklasım Lafza.
1: BJ Tenche. विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 2437।
2: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो।

0: विजय FM 101.6।
1: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
2: संपूर्ण भक्तजनहरूलाई सूचना गैडाकोट नौमा

0: जाति सुन्यो सुनाउझै लैरानी।
1: नमस्कार, म बुद्धिराम शर्मा। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6।

0: BJ 淡静 विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612-20437।
1: अहिले रातिको 9 बज्यो।